प्यारे श्रोता, ये एफएम वॉइस ऑफ शिमला फसाद है और मैं हूँ आपके आरजे सांगपुई फिर वापस आप सभी के लिए। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एफएम वॉइस में और इस प्रसारण में हमें हिंदी कलेक्शन से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। बेस्ट ऑफ इंडियन पॉप अली हैदर द्वारा गीत कोई है गीत के साथ इस प्रसारण की शुरुआत करते हैं।

वो था कोई है अली हैदर द्वारा गीत है और यहाँ पे आपके संदेश आए हैं। सबसे पहला संदेश वी कुंगते आ और वी कुंगते इस चंग हियान एस एम एस में सबेर तुन सेगमेंट दा कंदोंगा अब हन लोम में मनी हियानिन और जो संग पे रन ड्यूटी थे सुबह लोम में वे और ये फाते न गेन लो चे मो रन दिया गेन चा लो मिन गेन लेक लेक मो मासे मामा का चपला वांग ती खान मिन हन तियान वे तलता ते व्याव नांगिन गे มีค่าทำวันเวเอแม่มันอีจุ่มอจุ่วางจานินไงชัดกินไอ้กรันดิวตี้สันเทียเงี้ยเอสเอ็มเอสมาสเบอร์ละวีกุงเทียแล้วในบ็อกซ์ยาวินซูฟูดเซาดอนวิ่งวินกิชาดูเกชนักันพูดเสนเดชัยเฮอร์เย่ก็เหตุเฮกูดมอร์นิ่งอาร์เจนนมัสการ์ฮาวันไอส์เดย์รันเทียลาวรันคลันสก้าดูเกชนักันพูดแอนฟามิลี่รันทีเนี่ยหมาชาครับเฮกี้อาจดูเกชนักันพูดหรืออआप और आपके सभी परिवार वाले हमारे साथ एफएम जोए में बने रहेंगे। आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा दिल है तुम्हारा फिल्म से लिया गया गीत मोहम्मद दिल का सुकून और ये गीजे खास करके वी कुंगते तेछुंग

ग्वाले दुर्गेश नगन पुरते छुम कतान निसे तो इस गीत का आनंद लेते हैं। तुन्हु नहन खोरोलियन लमचंगा दारलोन पना जिन में एक पुजो दिन पुएते छान हाउतान नेक्स्ट कन प्ले ले तुर ही उलुक तक इन लोग इतना कतान ले त्लुंग तक इन तुम रम तेन थन थे नान दो सकने कन लान जवा इन तान लियाव लियाव निसे तो इस गीत का आनंद लेते हैं मोहब्बत दिल का सुकून।

अभी जो हमने सुरीली सी आवाज में गीत सुना है वो है कहो ना प्यार है। आपके संदेश आए एल जेड साइलो से अनियान एस पी एम ओ तब इप्ले ले तुरखा कप्रीति जिंता आर जे ते ते ही तान लिया लिया ओ रंतिया ओ आर जे ते ते पन लौंगा था तो रंगा एला नेक्स्ट सेकंड प्ले ले तुर ही एल जेड साइलो ले आर जे ते ते ते ते ते तान सियाले में मिन्नी से यहाँ पे अगला गीत रहेगा शान की आवाज में वो पहली बार। तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

प्यारा श्रोता, इस समय आ गया है इस प्रसारण के आखिर गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा पहला नशा, जो जीता वही सिकंदर है फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं। और अगले प्रसारण में आपके साथ रहेगी आपकी प्यारी सी आरजे आरजे पुतिया आप सभी के लिए। तो इस गीत का आनंद लेते हैं पहला नशा।

प्यारे श्रोता, ये FM जो इस और शिमला साथ है और मैं हूँ आपके आरजे सांगपुई फिर वापस आप सभी के लिए। इस प्रसारण में हमें मैंने दिल तुझको दिया, शारी नंबर वन और दिल है तुम्हारा फिल्म से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। इस प्रसारण में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज आप हमारे साथ FM जोई में बने रहेंगे। इस प्रसारण की शुरुआत के लिए सबसे पहला गीत रहेगा दिल है तुम्हारा फिल्म से लिया गया गीत दिल है तुम्हारा, और ये गीत आप सभी FM लिसनर्स के लिए है।

अभी जो हमने सुरीली सी आवाज में गीत सुना है वो है दिल है तुम्हारा, जो कि दिल है तुम्हारा फिल्म से लिया गया गीत है। और ये गीजे खास करके वी कुंगतिया तुन सेगमेंट द एसएमएस रंथन मसे बे तान खान नी से मसे एसएमएस से तुन किन छियार तान कन लखे करी देवांगा। ओ अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में, सोना कितना सोना है।

यहाँ पे आपके संदेश आए हैं वी कुंग ते से नी हे निन मामा का चप लबंग ती तू ईशाई स्वाम अनकनेम सु का लोमरे एम ए आर जे सांग पुर रंतिया बिरबेट शुक्रिया निये नू तान स्वानिन इंगे मन मो तो कहानी कलसन दोना इंगे अनलो चा रॉय रॉय आई का स्वानिन इंगे शाद खान वन वे मी खान नेम वे लुतु कनी मो ngai ngam deu khanin enge thamwang de bin enge na te tho san ve the ya lomom lutu kani पहला नशा यहाँ पे अगला गीत रहेगा जो जीता वही सिकंदर फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं और ये गीजे खास करके वी कुंग ते ते के गई ते खुल सिंह हितेंद्र दास और एल बी रनथे तो ना एफ एम जो लोगाई थमे लंगवाल उतान खान सियाले में मिनिन तान नी से नेक्स्ट गन प्ले लेते ही तो इस गीत का आनंद लेते हैं पहला नशा जो जीता वही सिकंदर फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं

0: watch more.
1: वो था ओ जाना तेरे नाम फिल्म से लिया गया गीत है। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा मिले हो तुम नेहा कक्कर और दोनों ये कक्कर की आवाज में, और ये गीत जो खास करके सांगी आपके लिए है।

बहुत मिले हो तुम नेहा कक्कर और टोनी कक्कर की आवाज में, और यहाँ भी आपके संदेश संदेश आये सांगी से अनिहान नलम वे खो सरकार आप लोग ले लोम ले रंती लमोई तक तक रंती छुआ जेल कन रंतु मंगा एफ एम जवाई लोंगाई था छुन जम जेल तुरी निन जवाई कन सोम जेल ने सांग पोई छानते ने नाइन लोंगाई था कता नेक्सा कन प्ले ले तुरही इंतान लिया लिया नी से यहाँ पे अगला गीत रहेगा ये वादा रहा, और ये कीजिए खास करके सांग एंड फ्रेंड्स आपके लिए है।

प्यार श्रोता, समय आ गया है इस प्रसारण के आखिर गीत का और यह प्यागला गीत रहेगा वो हमदम सोनी धूम मचाले हैं और ये गीत जो खास करके आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है। अगले प्रसारण में आपके साथ रहेगी आपके प्यारे सी आरजे आरजे प्रीतिया आप सभी के लिए। तो इस गीत का आनंद लेते हैं धूम मचाले।

अभी जो हमने मस्ता गीत सुना है वो है एक पल का जीना, कहो ना प्यार है फिल्म से लिया गया गीत है। यहाँ पे अगला गीत रहेगा ना तुम जानो ना हम, कहो ना प्यार है फिल्म से ही लिया गया गीत का आनंद लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपके संदेश की ओर बढ़ते हैं। गुड बॉय लो लंगा अनिहन और जे एस पी हुन वतलेम तो वे ngoi rangin kalom pui chen ya rantia ban lomom chinem hai voina tana kan hun toplam kan lo theng le ta a minute som ni chavel kan le neya fm zo oil lo nga thla zel turin in zawai kan kan som se wa zin pa nge motor lir the shang shang chuanga lo nga thla te no mani ti kan chia in tumram te twang ta kan thlen the nan du sak na kan lan che wani tin lo lam changa lo nga thla chin te poino mani ti kan chia a nge in na te twang ta ka in tho zel the nan le hun nuam takin lo man the nan du sak na kan lan bok che wani agle git kyo बैठे है और यहाँ पे अगला गीत रहेगा ना तुम जानो ना हम, कहो ना प्यार है फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने सुरीली सी आवाज में गीत सुना है वो है ना तुम जानो ना हम कहो ना प्यार है फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लिया है हमने। और इस फिल्म के स्टार्स है ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल। अगले गीत की

अभी जो हमने मस्त सा गीत सुना है वो है चांद सितारे कहो ना प्यार है फिल्म से लिया गया गीत है और कनो पनलाई पो खानी नहीं है कनो लामपुई वेन से थे छोंग छोंग खप में हम वी कुंते थे मामुनी रम लोते यांग इन लाम का कन वार वे छीन खप में आ कनो लामपुई वे छोंग छोंग छीन नहीं यहाँ पे आपके संदेश आए हैं वी कुंते ऐसे अनि हियान इलो छियार दि क्लब थे नान कताई पुलु क्ले अनि इन छियार दि ग्लो हियान के मा बुखी कलुंग नोर छिना तुन चुम छु दिन पुया फल कोन गोर गोर ओ हरन ती नि हा चान पा दिन पुया खान हे लथन सख तु सिया ले मे मई वी कुंग ते ने या ने किनि पुन कन चन पाक लाउ खा आइ चंग लेत लत मई मिनट सॉन्ग वेल कन ले नया अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा प्यार की कश्ती में और ये गीचे खास करके वी कुंग ते ले अचान पा दिन पुयता नी से तिन गुड बॉय लो लंगा नी हैं आर जे एस पी एफ पी मोनिता इस्लाम ग्लो बॉय पुया ए आई मेता जारा का इन सिंग फेल थे ता कथो हुआई मई कथो हुआई मई अकोंग अलव कॉल वे नुआला इप्लेन लुटुक हिंदी

अरिजीत सिंह की आवाज में समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा क्या मुझे प्यार है, वो लम्हे फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं और ये गीत जो ये आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है। इस गीत के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और आप सभी को शुभ दिन, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपके संदेश की ओर बढ़ते हैं फिर से। फान कलव दाक फान जेल अमी कछियार दिखेम कशि चालो तोपलम का ओ निया तिरो इन जवाई में हन इन गयम दोने में मेया एमिनिट गा वेल कन लेने या नेक्स्ट कन प्ले टूर ही इन जवाई तान खान नी से गुड बॉय लव लंग लिया निहन आर जे एस पी हो हुना पो इलव ड्यूटी ले हुना तान रुनम तकिनी तान एफ एम जोय रुना हियन इलव लन ले हुन तुर कलव हाक रिंगंग तुन तान स्वान बाय फोट ओरंटिया इन जवाई खान bye bye chat see you fek kabuk chewa or patian zara dam habila kanin tong le thwai tur anga yang o next kan play le tur hi voina in hun lut tak senga fm zo oilo nga tha tu zong zong te voin hun nuam ta kein lo man chun zom zel the nan du sakna kalhan chewa in tan big liao liao khan ni se to is geet kan and lete hai kya mujhe pyar hai is geet ke sath main aap sabhi se vida leti hu aur aap sabhi ko shubh din aur main hu aapke rj sangpui aap sabhi ke liye।

0: nilaini tana kan hun voi khatna chulo to pleta a lian sang pui kania control room duty hi engineer vanel shwaya ani tlaidar li le chan via kan hun voi ni na kanchan leang min ngai thatu de chunga lom thu kan soya min lo ngai thale cha turin in zawain kan so ma cheu chana hun man nuam vek ole
1: Ish Kumar Bal भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया। मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है। ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए सिरे से बातचीत के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के बारे में जानकारी देंगे। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले में जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुरुदुगुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाकर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनगिरी सिरी जिले के में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के यजाली क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 72.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन के दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षा रानी मिंज गोलकीपर की भूमिका निभाएंगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दी। इसके साथ

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उबदे। समय हो रहा है 4:30 बजे हमारी स्टूडियो की घड़ी में, और ये सिलसिला जारी रहेगा 5 बजे तक। और इस भाग में हम पिछले भाग की तरह ही आपका मनोरंजन करने वाले हैं हिंदी फिल्मों के गानों के द्वारा। और नीरज श्रीधर शान, अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज हम सुनने वाले हैं, और बिना वक्त जाया किए हम सुनेंगे सबसे पहला गाना नीरज श्रीधर की आवाज में, और वो होगा जाना बिन तेरे। और आप मैसेजेस की बौछार लाइए दोस्तों, आप बताइए कि आपको हमारा भाग कैसा लगा, आपका दिन कैसे बीता, मैसेजेस द्वारा हमें जरूर याद कीजिएगा। नीरज श्रीधर की आवाज में जाना बिन तेरे।

नीरज श्रीधर की खूबसूरत आवाज में हमने सुना जाना बिन तेरे, और अगला गाना भी इन्हीं की आवाज हम में सुनेंगे, सिटी ऑफ बॉम्बे। लेकिन उससे पहले मैं मोहिते का मैसेज है, ओमते नमस्ते, आपको भी नमस्ते, ड्यूटी नुआम ले रोनतिया ओ नो हनुमन नुआम ओ। हितेंद्र दास आसाम का मैसेज है, इन्होंने लिखा है आरजे नमोस्कार, आपको भी नमोस्कार हितेंद्र जी, बने रहेगा हमारे साथ, बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनाने वाली हूँ। अगला गाना हम सुनेंगे शान की आवाज में, दोनों जहां।

शान के खूबसूरत और मनमोहक आवाज में ये था दोनों जहां। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एलबी वेंथली ने लिखा है आज इबुलटन ना अनल बुका गुड इवनिंग ले हरंती हा नंग फो गुड इवनिंग आ अथे आ अरम चुआन पीलु खा लो हाई था इलाती आ तुन का प्लेलिस्ट आ चोरम लो मै थे या ओम चल करोन प्लेंग ए यंगा अनी लो वेक पोइन आरजे चोइस आ खान का लो दांग ओ मिलो हाई था चल चल हाई दोनिया गाते पा बिल को थिरियन आज हम ते लाइलम छिबाई ले आपको भी छिबाई बहुत बहुत छिबाई जनी नि ड्यूटी हुन नाम तका हुनी मनते ना दु सक लानचुंग चे इन इलपते ले तुरखा पीसी जेसी काई पर पारिपु मे मोइते या गुड बॉय ओमेगा सांगते या ले इतान का थाने अर दिनी गाते पा बिल को थिर कन वहन लोम छिन तक एम होल किम जाउ थियम बक्सिया मो आप सभी के लिए आप चारों के लिए यानी कि हाँ पाबिल खोर थी एलबी रेंथले हितेंद्र दास और मैं मोइते के लिए अगला गाना जो मैं सुनाने वाली हूँ और आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ये अगला गाना है छिपे छिपे शान की आवाज में।

0: हम और आप जुड़े हैं एफएम जोई पर आपके साथ जुड़ी है आरजे उमदे। सुनने और सुनाने के इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। गुड बॉय का मैसेज हम पढ़ेंगे आरजे उमदे तलाईलम चिबैले ओ नंगपो चिबै ओ इलौलन हुन कन लौहा करेगा कन्नाक छक्ता छेरो निन लजै लुतुक ओके पोनिन पसेई छि कलौहा छुआक मो। अगला गाना जो हम आपको सुनाने वाले हैं वो होगा कांटा लगा, शेफाली जरीवाला को फिल्माया गया था इस वीडियो में और बहुत ही गजब का खूबसूरत वीडियो है दोस्तों, और बचपन में हमने बहुत सुना, आप भी सुनिए कांटा लगा।
1: Everybody now. Let me see you more.

ये था जब वी मेट मूवी से तुमसे ही, और इस पर शाहिद कपूर और करीना कपूर को फिल्माया गया था। और दोस्तों वो बहुत ही लोकप्रिय फिल्म थी और गाने भी बहुत ही लोकप्रिय साबित हुए। अगले गाने की ओर बढ़ते हुए गुड बॉय का मैसेज पहले हम पढ़ेंगे। आज जो हमते इस सेगमेंट पीवे डायन फैंस तम तक ही कंली मिन कंथा बोंग छिन इलोलन हुन कन कन हाक लेल छिन लो मिन स्वी डाइन थुम जो जेद तुक मा मानी है हिचो मो गुड बॉय हिचो ती दान छन खा निवे आत्रो अबे रोचू अलोम कति सिम सिम कलोम लुक अ chair revek lo ma ilang karil ru khan ka chair revek ani आप सभी के लिए और खासकर गुड बॉय के लिए जाते जाते हम आखिरी गाना सुनेंगे, और ये होगा हम तुम मूवी का टाइटल ट्रैक जो कि रानी मुखर्जी और सैफ अली खान पर फिल्मा गया था। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में हम ये आखिरी गाना सुनेंगे हम तुम मूवी का टाइटल ट्रैक। इसी के साथ मैं आज ही हम तो आपसे इजाजत चाहूंगी और दोस्तों

वापस मैं आपसे जुड़ूंगी 6:40 पर, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ठीक इसके बाद आप सुनने वाले हैं वेस्टर्न म्यूजिक। जुड़े रहिएगा FM ज़ोय के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एफएम जॉय पर। आप हमें सुन सकते हैं 100.7 पर या फिर रेस मोबाइल ऐप पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमतई। समय हो रहा है 6:40 और ये सिलसिला जारी रहेगा 7 बजे तक। और दोस्तों, वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारे गाने हैं जो मैं चाहती हूँ मैं आपको सुनाऊं, लेकिन फिलहाल आपको मैं इस गाने से आप का स्वागत करूंगी जो कि है अलिशा चिन्नाई की आवाज में तू कहां। बहुत दिनों बाद स्टूडियो से मैं ये गाना प्ले करने वाली हूं आप सभी के लिए और मुझे आशा है कि आपको जरूर पसंद आएगा। तू कहां अलिशा चिन्नाई।
1: मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भूलना भी चाहूं तो किस तरह कि तुम तो हकीकत थे कोई ख्वाब।

आज ही कुछ निराली है दोस्तों, कितना भी सुने कान नहीं थकते। अगला गाना सुनेंगे तेरा घाटा, गजेंद्र वर्मा की आवाज में, करिश्मा शर्मा की आवाज भी हम सुनने वाले हैं। के वाला का मैसेज है, आज ओम ते अमोई लुत्तु के रंती है के वाला मैं विन अमोई रंती चौन अमोई तकजेत अन्यांग। तेरा घाटा गजेंद्र वर्मा और करिश्मा शर्मा की आवाजों में।

दोस्तों ये था किंग। जी हाँ, गाने वाले थे, उनका नाम है किंग और इन्होंने गाए हैं तू मान मेरी जा। ये कुछ सालों पहले सुपरहिट साबित हुआ था और उनके दो तीन गाने बहुत ही लोकप्रिय साबित हुए, उन्हीं में से ये एक था। आई होप आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। एक और गाना हम सुनेंगे लेकिन इस बार थोड़ा ब्रोकन हार्ट होने वाला है, यानी कि हम सुनने वाले हैं कभी खुशी गम, मूवी का टाइटल ट्रैक। जाते जाते हम सुनेंगे और इसी के साथ मैं आरजे अमदे आपसे इजाजत चाहूंगी। और ठीक इसके बाद यानी कि 7 बजे, ठीक 7 बजे आरजे मिकी आपके लिए लेकर आने वाले हैं मिजो लव सॉन्ग्स, माफ कीजिए दोस्तों, डिवोशनल सॉन्ग्स। जुड़े रहेगा FM ज़ोए के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उमते। स्टूडियो की घड़ी में 8:02 हो रहे हैं, 3 मिनट हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा 8:30 बजे तक। और इस भाग में एक बार फिर हम आपका मनोरंजन करने वाले हिंदी फिल्मों के गानों द्वारा। और सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है कुछ कुछ होता है मूवी का टाइटल ट्रैक, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

ये थाउदी नारायण और अलकायानी की आवाजों में कुछ कुछ होता है मूवी का टाइटल ट्रैक। अगले गाने की ओर बढ़ने से पहले आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। ये मैसेज है लिनपु यफल कोन वेंगलाई, इन्होंने लिखा है आज प्ले ले तुर्खा नखमा तान ले लवाई था वे जोंग जोंग ले आज ये जोंग जोंग तान ले कठियान ते वेंग शंग शंगमी ते तान अरों दिनी ला लिनपु यफल कोन यान वाहन लोम छीन तक एम ओमेगा सांगते यान तो ना आरजे ड्यूटी ही तो लोमयांग जई थे न्या इदम छा एम रंती आ कदम मलोम इदम जोकेम इप्ले तुरते कन पनी तान ओ कुंग ते ले मेंग मोयते ते माई लविन अरों दी नी मेंग मोयते पोरोन लंग ले ची आ कलोम लो तुको ओमेगा मेंग मोयते हन ओम ते अमोय खालिन लुंग वती लेंग वे ला हिदौ दौ अतमनिया तरो दिक्चिया 90s लाउ हि नलकतिले जवाला आजे जौ दिन ने हन नल कंतिफाल लक अमो चुवाचन कन प्ले लाउ थे लाउ अनि 90s लाहि का प्ले ले टूर हि अगला गाना जो मैं आपको एक बार फिर सुनाने वाली हूँ, बहुत बार मैं सुना चुकी हूँ स्टूडियो से, एक और बार सही तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है।

तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गाना, मेरे फेवरेट गानों में से एक था और सोनू निगम की आवाज भी हमने सुनी। अगला गाना हम प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले लदीमपुर एफएल को उनका एक और मैसेज आया है। इन्होंने लिखा है, कछ्यान्ते पापारी पुतान कुंते अमिंग मोइते के वाला तुई कोलम भी तेतान अरोती दिला लदीमपुर एफएल को वेंगला एफएमआई सांग ए मेम तू हियान मो अरुण थन सकवेक से वनी। अगला गाना आप सभी के लिए स्पेशली लंदिन पुया फल कोन में मोती है ओमेगा सांगते या और जितने भी हमारे श्रोता हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन सभी के लिए, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना मैंने प्यार किया मूवी का एक और खूबसूरत गाना आप सभी के लिए।

ये था दिल दीवाना बिन सजना के माने ना मैंने प्यार किया मूवी का एक खूबसूरत एक और गाना और अलका यानी की आवाज में। आपके मैसेजेस दोस्तों हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और गाना हम सुनने वाले हैं। दो गाने हम और सुन पाएंगे, लेकिन पहला गाना जो मैं आपको सुनाऊंगी और ये स्पेशली मैं डेडिकेट करने वाली हूँ नूजे खान दुना मिंगाई थमे का अतान खान कनलान गोई गोई बीक अंगे ओ तुम ही हो आकाश गांधी और सनम पुरी की आवाजों में।

तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। ये आवाज हमने सुनी आकाश गांधी और सनम पुरी की आवाजों में। अगला गाना, जो कि इस भाग का आखिरी गाना होगा, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में हम सुनेंगे पल पल हर पल लगे रहो मुन्ना भाई का ये खूबसूरत गाना। और ये मैं उन सभी लोगों को डेडिकेट करूंगी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एफएम जोई पर, और खासकर वा चोई ले अजवाल देतान खान कर उन खान सकनुन ले। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आरजी अमते आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी 9:30 बजे, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ठीक इसके बाद आरजे मिकी आपके लिए लेकर आने वाले हैं मिजो डिवोशनल कोरल सॉन्ग्स। जुड़े रहिएगा एफएम जॉय के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उमते। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:30 बज रहे हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा 10 बजे तक। और इन आधे घंटे में हम चाहेंगे कि हम आपका खूब मनोरंजन करें। और इस भाग में हम आपका मनोरंजन करने वाले हिन्दी फिल्मों के गानों द्वारा हम हिन्दी गाने सुनने वाले हैं। और मेरे मन पसंदीदा गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाऊंगी वो होगा एक विलन मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज में। हम सुनेंगे मिथुन का संगीत है हमदर्द।

ये गाना हमने सुना हमदर्द एक विलन मूवी से और आवाज हमने सुनी अरिजीत सिंह की। अगले गाने की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आपके मैसेजेस हम पढ़ेंगे, आपके मैसेज आए हैं और सबसे पहला मैसेज हम पढ़ने वाले हैं गुड बॉय की ओर से। इन्होंने लिखा है आज उमते कल ओम ओ रंधिया फेल ठीन खो मई गुड बॉय हियान कल अला ओम थू मिरन शेलनी ओ मिल मिन पुई चर चर जबी खान के एस एम एस अब मुलाओ अब हुमन लवो नि मई थे रोतिया नि ए टॉप डोन तो लम खचुआन ए मुतलाई दो फोन नि मई थे नि मो ये 932 अनि तो आ ता खचुआन चेक बेन सो तो आ मुलाओ फोन नि मई थे नि मसे के मान कलो मुचिया गे हे कछिया रे ओ लनिन पुया फलकोन veng lai hian rj play le tur kha nangma ta le longai thave zong zong le ka chan te veng sang sang mi te tan le par pari pu tan kung te tan mi moi te tan le ke wala tui kwal mi te tan aron din ni ladin pu ya hian ron phuam sau te khop me ya chan te tan polom om chin go tang te chot ke ma hian a big takin ka chian te mun sang sang om tung vela om te ma bok lam om te sia suk lam om te tan khan karon than saka an ming kan lam lo lo anga zwal te te wa choi te uma ki mi te te chuanin umai te mo ser chip lam te po kan ron than sak vek cheu ni kalap ron te le tur hi sanapuri ki awaz mein hum sunne wale hain तेरी आंखों से अपनी नजरें हटाऊं कैसे जुनिता गांधी और सनमपुरी के आवाजों में हम सुनने वाले हैं अगला गाना उन सभी के लिए जो इस वक्त हमारे साथ एफएम जॉय पर जुड़े हैं।

तेरी आंखों से नजरें अपनी हटाऊं कैसे, चुनिंदा गांधी और सनमपुरी की आवाजों में हमने सुना। अगला गाना जो हम सुनने वाले हैं, उसको कहने से पहले उसके जो बोल हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल मैं आपके मैसेजेस पढ़ूंगी। ओमिका सांगते ने लिखा है, तू नार्जे ड्यूटी तो दिख वेल वेक मीनू मानी ला ते रोती नी पे तुर्थे का कंपनी ता लिया लिया रोती नी रोन जई वेल वेक मई नी ला दिन फू ये फल कौन बेला हैं हे चो आरजे मिकी ता नितलात मई ओ हे चो अरुण छू तो चार मई रोसे ओ अधियान के लौदा छा अंगे। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे आप सभी के लिए तेरी मेरी कहानी गब्बर इज बैक से, जो कि अक्षय कुमार और करीना कपूर पर

तेरी मेरी कहानी गब्बर इस बैग से अरिजीत सिंह की आवाज में। अगले गाने की ओर हम पढ़ेंगे, लेकिन आपके मैसेजेस दोस्तों आए हैं। गुड बॉय ने लिखा है, इ मुत स्वाग वे तो अथो एम रंतिया स्वाग वे दे उतो अथो वे दार सोम होल देख देख ही चौन मुठी चौक आला अब मेरा जो तुन दिन मुना ही चौन लछुआक लु तुक लो ओ चौंगी या नार्जी हमी लो सोम वे तो मेरू रंतिया लो लो तेल वे तो मेला तरो दिहान का सोम चे आगाई रो ओ आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना। कौन सा गाना मैं आपको सुनाऊं इस बार? बहुत सारे गाने हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल हम सुनने वाले हैं। मैंने आपको यार रहमान का गाना भी बहुत बार मैं सुना चुकी हूँ, तो इस बार सुनते हैं रॉकस्टार मूवी से तुम हो। मेरा फेवरेट गाना है ये मोहित चौहान की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

हम और आप जुड़े हैं फिल्म सवाई पर, आपके साथ जुड़ी है आरजे उमदे। सुनने और सुनाने के सिलसिले को जारी रखते हुए हम आखिरी गाना प्ले करने वाले हैं दोस्तों। 5 मिनट बाकी हैं 10 बजने को, और ये कार्यक्रम जो है, ये मेरा भाग जो है, ये आखिरी भाग है। और दोस्तों समय का पता ही नहीं चला, हमें इतना मजा आया, आपको कैसा लगा आप जरूर हमें मैसेजेस द्वारा भेजा करिए। आखिरी गाना हम सुनने वाले हैं तुम मिले मूवी का टाइटल ट्रैक, जो कि इमरान हाशमी और सोहा अली खान पर फिल्माया गया था। नीरज श्रीधर की आवाज हम सुनने वाले हैं, सीजेड ने लिखा है। दिल दीवाना बिन सचना के जायला तखान कलो कमेना इला पनी प्लेन नंदू पन चार वे दूलो कलोम लो खोप मई कलो में मुत्तु हिले तेरो त्या हिंगे दम कलो दिल मोल मोल कच्चियार फन तो भी कलो तेरो ती ती तो वो लो कंटी खो अचान ही चुन कंचियार तो एमो ती ते ही लो ओले में मो कलाई खा ये आर जे ते मिल लो से थियाम तुर खान कंगेन मोल मोल चे हो अनि। जाते जाते मैं आपको ये गाना सुनाने वाली हूँ तुम मिले मूवी का टाइटल ट्रैक। इसी के साथ मैं आज ही हफ्ते आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी अगले हफ्ते मंगलवार की रात को। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ठीक, इसके बाद आरजे मिकी आपके लिए लेकर आने वाले हैं मिजा लव सॉन्ग्स। जुड़े रहिएगा एफएम जॉय के साथ। आप सभी को आरजे ओमती की तरफ से गुड नाइट।